हरिदस्वसहस्रार्चिर्सप्तसप्तिर्मरीचिवान् तिमिरोन्मथनस्यम्बुस्त्वष्टा मार्ताण्ड अंशुमान् हिरण्यगर्भशिशिरोस्तपनो भास्करो रविः अग्निगर्भोदिते पुत्रः शङ्खः शिशिः।

परम हर्षमवाप्नुवान् त्रिराचम्यासु चर्भोत्वा धनुराधाय वीर्यवान् रावणं प्रेक्ष्य हृष्टात्मा युद्धाय समुपागमत् सर्वयत्नेन महतावधे तस्य धृतो भवतु अधरविरद निरीक्ष रामं मुदितमनापर